0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वस्थ अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: उधार
1: श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं।
0: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता हूं, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें होती हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पढ़ाने का जब जिक्र हो ही जाता है तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में एक छवि बन जाती है कि कोई हमारे साथ मेंटर जुड़ रहे हैं, गुरु जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर जुड़ रहे हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराता, लेकिन और भी बहुत कुछ क्वालिटीज हैं उनके पास, जैसे कि वो 3 बुक्स उनकी पब्लिश हो चुकी हैं, मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में टॉप 10 में आप रह चुकी हैं, और आप हैं मेरे साथ डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो मैम, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच गगन जी फॉर हैविंग मी हियर।
4: ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हो पा रही है, बातचीत हो पा रही है, और अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। मैंने आपके बारे में तारुफ कराया है अपने लिसनर्स को, मुझे लग रहा है कहीं कम तो नहीं है या कुछ और आपने छुपा के रखा हुआ?
5: गगन जी, ये तो आपका बड़प्पन है, आपने इतना कुछ बताया मेरे बारे में, बट एट द सेम टाइम यही मैं शेयर करना चाहूंगी कि शुरू से लेकर अंत तक मैंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही शिद्दत से अपनी चीजों को चाहा है। और इस शिद्दत ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है।
4: Great.
5: और कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये सब। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, उसमें गाना गाना, उसमें शोज करना, उसमें पढ़ाई करना, उसमें फर्स्ट आके दिखाना,
4: Nice.
5: उसमें रोल मॉडल बनना दुनिया के लिए। तो ये सब कुछ मैंने करके बहुत ही तरीके से देखा, अंदर घुस के देखा कि वाकई जन्नतें होती क्या हैं।
4: एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो ये जो सफर आपका रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सालों की मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है, कब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कब आपको लगा कि मुझे एक प्रोफेसर बनना है, कब आपको लगा कि मुझे राइटिंग में जाना है, बुक्स लिखनी है?
5: छोटे होते से बड़ा अरमान था कि मैं सर्जन बनूं। तो तब डॉक्टर खेला करते थे, छोटे थे, 11th 12th में मेडिकल लेने की कोशिश की, बट हालात ऐसे बने कि कॉमर्स ली। उसके बाद कॉलेज करने वाले थे, कॉलेज करे तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब कुछ अपना शुरू करते हैं, या क्योंकि हमेशा से ये जरूर था कि प्रिया सचदेवा से पहले डॉक्टर लगना चाहिए। तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, अभी 10 ईयर्स रुकते हैं, 10 ईयर्स रुकना पड़ेगा, मेडिकल लाइन बहुत ही, यू नीड टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और आज आप सबके सामने ही है। करते करते करते करते उसमें बस लोगों का साथ मिला, बहुत अच्छे गुरुओं का हाथ मिला, और बहुत आशीर्वाद रहे साथ में। वो कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज की तहे दिल से चाह होती है, तो आपके सामने गुरु अपने आप आ जाता है।
4: बहुत खूब, बहुत खूब।
5: तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और बहुत अच्छे गुरुओं ने मुझे बहुत लंबे समय तक अच्छी गाइडेंस में यहाँ तक पहुँचाया है।
4: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
5: तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भी वो जहाँ भी हैं, अगर वो सुन सकते हैं तो उनको और जितने लोगों ने प्यार दिया और अपना साथ दिया, रातों को जाग जाग के वो पढ़ाइयाँ की हैं जहाँ तक अब आज हम पहुँचे हैं।
4: नाइस नाइस। गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है, जो बॉन्डिंग है, उसके बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुँच पाए। चूंकि आप एक प्रोफेसर हैं, बच्चों से आपका सामना रोज रहता है, तो आपके सामने जो आपके स्टूडेंट हैं उनके साथ कैसी ट्यूनिंग है, मैं इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। लिसनर्स, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और प्रोग्राम में आपका अपना वही बिंदास, सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10। जब अच्छा लगता है सुनकर, ये पता चलता है कि हमारे जो टीचर हैं वो भी मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे उनके पास गुण हैं। और खासकर जब चर्चा होती है तो वो सारी बातें खुलकर आती हैं कि ये इस फील्ड में मैंने हाथ आजमाए हैं, मैंने ये किया है, मैंने बुक भी मेरी पब्लिश रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रिया सचदेवा, मैं आपको बताना चाहूंगा लिसनर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 के टॉप 10 में रह चुकी हैं, 3 बुक्स आपकी पब्लिश हुई हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रिया आपसे बात हो रही थी कि जो एक संबंध है गुरु का और शिष्य का, जो तालमेल है, आपके साथ बहुत अच्छा रहा। आपका किस तरीके से तालमेल रहता है आपके अपने स्टूडेंट्स के साथ?
1: गगन जी, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुकी थी, तो दूसरी करने में यूनिवर्सिटी गई थी, तो तब मैंने सोचा था रेगुलर करूंगी। तो जब वो ज्वाइन करी तो उसमें भगवान की दया से 100 में से सिर्फ एक ही नंबर कम था। तो जब वो ज्वाइन किया और वहां पर ऐसे हुआ तो यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई। तो तब लेक्चरर अपॉइंट हुआ करते थे जमाना पहले, तब प्रोफेसर्स और इतना एडवांस स्टेट नहीं था। तो वहां पर शुरू किया अपना करियर, तो वहां पर करते करते फैशन शोज में जाना शुरू किया एज अ फैकल्टी। वहां पर जबरदस्त शूटिंग होती थी, तो लगता था शायद बच्चे वैसे ही शोर मचाते हैं। तो करते करते करते करते मुलाकात होने लगी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया कि आप मॉडलिंग करो, आप यहाँ आओ, आप हमारे एक एक दो दो दिन के वो जो शूट्स होते हैं उनमें आके आप वो करो, सिर्फ अपना पिक्चर्स शेयर कर दो या फिर आप एक छोटा सा एक्ट कर दो। तो फिर एक सीरियल भी मुझे मिला इंदिरा का। तो लेकिन वो मैं कर नहीं पाई उस टाइम पे भी, क्योंकि शायद भगवान को मेरे लिए टीचिंग ही बढ़िया लगी। उसके बाद करते करते फैशन शोज करे, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में सेलेक्ट हो गई, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल में सेलेक्ट हो गई, मिसेज यूनिवर्स में सेलेक्ट हो गई। फिर फाइनली जो मैंने किया वो मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन था, क्योंकि सबकी डेट्स एक साथ में थी।
0: किसी एक का चुनाव करना था, राइट?
1: तो वो किया, उसमें टॉप 10 में थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन पल थे, और उसके थ्रू बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा,
0: एक्सपोजर मिला।
1: और उसके बाद 3 किताबें अपनी मैंने लॉन्च की, और पढ़ते पढ़ाते करते कराते बहुत अच्छा संगम रहा नई नई चीजों का और पढ़ाई का।
0: अच्छा डॉक्टर प्रिया, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो स्कूल है, ग्लैमर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में जाते हैं, कोई एंकर बनता है, कोई आरजे बनता है। चूंकि आप ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं और आपने इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया है, तो किन किन चीजों से लोगों को गुजरना पड़ता है, किस तरीके से अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और वो आप हमारे लिसनर्स को बताइए ना प्लीज।
1: ऐसा होता है गगन जी, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ये इंडस्ट्री बड़ी फैसिनेटिंग होती है, बड़ी इल्यूजनरी होती है, हमें लगता है कि हम यहाँ आकर पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में एक्चुअल में जाते हैं तो देखते हैं कि जिंदगी कुछ और है।
0: राइट राइट।
1: लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तो खुद पर यकीन कर।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: तो अगर आपकी अगर आपके अरमानों में, चाहत में इतनी शिद्दत है, तो आप आरजे हो या आप कोई एक्टर हो, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता।
0: बहुत खूबसूरत।
1: तो जिस एक्सटेंड तक आप मेहनत करेंगे जिस भी एस्पेक्ट में मीडिया की, तो ऑब्वियसली आपको उसमें
0: रिजल्ट मिलने
1: शुरू हो जाएंगे। और जब मिलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको इंटरेस्ट देंगी, आपको बढ़ाएंगी और आपको जिताएंगी।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। लिसनर्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, चाह रखना बहुत जरूरी है, और जहाँ चाह होती है तो ईश्वर की दुआएं, शुभकामनाएं, बड़े बुजुर्गों का साथ, दोस्तों का प्यार, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम बहुत सुखद होते हैं, वो आपके फेवर में होते हैं। और अपने ऊपर तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, जानना होगा, समझना होगा कि मुझे आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है तो किस तरीके से अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमारे साथ हो रही हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा जुड़ी हुई हैं।
1: मैं यही कहना चाह रही थी कि जब मैंने मॉडलिंग एक्चुअली में की तो आप सोच भी नहीं सकते, आई वॉज टू फैट। आई वॉज हैविंग नियर अबाउट 75 kg ऑफ वेट. नो वन कैन थिंक ऑफ बींग अ मॉडल एट दैट स्टेज बिकॉज आई जस्ट डिलीवर्ड माई फर्स्ट बेबी. पर उसके बाद भी इतनी मेहनत करके आई गॉट इन फर्स्ट 10. दैट वॉज एन अचीवमेंट.
0: ओह एक्सीलेंट एक्सीलेंट.
1: सो इन एवरी एस्पेक्ट इफ यू सी इट वॉज अ हार्ड वर्क विच एक्चुअली पेज.
0: राइट एब्सोल्युटली राइट. सो लिसनर्स, मैं भी वही बात कह रहा था. इस बात का सार यही निकल कर आता है कि अपने ऊपर अगर आप वर्क करेंगे या अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं जाएगा मत. स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM. प्रोग्राम है आपका अपना भाई बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें, मेरे यानी गगन के साथ.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में आज मेरे खास मेहमान हैं, गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, एक बार फिर से आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: मैम, आपसे मेरी जो बातें हो रही थी कि जहां चाहा वहां रहा, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं। ये सच है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोग आपका इम्तिहान लेते हैं, और अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं तो मैं समझता हूं कि दिक्कतें परेशानियां आती जरूर हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बुक्स के बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए कि आपने जो बुक्स पब्लिश हुई हैं, आपकी तीन बुक्स, जैसे कि आपने हमें बताया, न्यू मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड अफेक्टिवनेस, तो क्या सोच के आपके दिमाग में ये टॉपिक आए कि मुझे ये लिखना है, और क्या अभी आप कर रहे हैं बुक्स के रिगार्डिंग?
1: मैंने जब अपनी PhD कंप्लीट की तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए भी और मेरे पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि मैं ही थी जिसने बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबरों से उस चीज को हासिल किया। चैलेंज ये था कि उस टाइम अगेन थोड़ा सा फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स थे, जिसकी वजह से एकदम से वापस जॉइनिंग बैक नहीं कर सकती थी। तो मैंने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया, इंस्टेड के मैं उस टाइम को ऐसे वेस्ट कर देती, मैंने उस दौरान 6 महीने में मैंने 3 किताबें लिखी, और मैंने वो 3 किताबें।
0: ओह माय गॉड, बहुत बड़ा टास्क, और इतने आसानी से ये कैसे कर पाई? अनुभव की वजह से?
1: अनुभव भी और काफी मेहनत और चाहती, फिर यही कहूंगी, चाह बहुत थी कि ऑथरशिप हो, अपनी हो। तो जब सबको देखा करती थी, गुरुओं को, कि उनकी किताबें छप रही हैं, तो दिल करता था कि अपनी भी हो। तो जब अपना लिखना शुरू किया तो सारे वो लेटेस्ट चीजें जो आने वाले समय में बच्चों को फायदा देंगी। मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी एक लाइन है जिसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, तो बच्चों को ये समझने में बहुत आसानी होगी कि हर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडवर्टाइजिंग की किताब लिखी थी, तो उसमें मैंने जिक्र किया है कि आने वाले टाइम में ये जो एड्स हैं ये क्या उनके लिए लेकर आएंगी और किस तरह की हो जाएंगी वो।
0: मतलब समझाने, क्या लेकर आएंगे? रोजगार की बात कर रहे हैं आप या
1: जैसे 10 साल के बाद इसका नजरिया उनके लिए क्या होगा? तो जो पर्सपेक्टिव आज से 10 साल के बाद वो सोचेंगे, वो मैंने कोशिश की है कि अपनी समझ से अपनी बुक में रखूं। अब जैसे हमारे जो ये बच्चे हैं, ये मिलेनियल्स हैं, तो अब इनके क्या शौक हैं, क्या ढंग हैं, ये गैजेट्स के साथ पैदा हुए हैं, गैजेट्स ही यूज करते हैं, जबकि हमारी एजुकेशन बहुत डिफरेंट थी। तो आज आने वाले टाइम में ये जो नया मीडिया है, ये उसको कैसे चेंज कर देगा, और उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्या थ्रेट्स होंगे, और किस आसानी से वो अडॉप्शन कर पाएंगे उन चीजों का, ये सब मैंने अपनी किताबों में।
0: बहुत खूबसूरत। जितना मैं आपसे बात कर पाया हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि इस पे एक डिबेट हो सकती है, या इस पे एक और चर्चा हो सकती है आपके साथ। वाकई रियली नाइस टॉक टू यू डॉक्टर। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि फिटनेस के बारे में आप मुझे बता रहे थे, और मैं ये जानना भी बहुत जरूरी है मेरे लिए कि किस तरीके से एक बंदा अपने आप को फिट रख सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है, और आपका फिटनेस का जो राज है वो देख के लगता नहीं कि बस आप मुझे यही बता ही दीजिए कि फिटनेस का राज क्या है।
1: मैं तो यही कहूंगी गगन जी कि फिटनेस के लिए सबसे पहले आपका पॉजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आपको अपने आप को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जब आप व्यायाम करते हैं, रोज करते हैं, तब भी कई लोग होते हैं जो अपना वजन कम नहीं कर पाते, उनको 10 तरह की बीमारियां होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फोकस एक चीज के ऊपर होता है। आपको अपनी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ, सब चीजें एक साथ में देखनी होती हैं। तो अगर आप अपने डाइट कंट्रोल्स कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है, एक्सरसाइज के साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। तो अगर आप पर्सनल बैलेंस नहीं लेके चल रहे, सिर्फ वर्कहोलिक हो, तब भी दिक्कत है, क्योंकि भगवान ने ये जो सृष्टि रची है ये सब बैलेंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप अपने सारे एस्पेक्ट्स को, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप बैलेंस करेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेस, और आप अपने जिमिंग्स पे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान देंगे, तो ऑफकोर्स आप मुझसे भी बेटर फिट होंगे।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि लिसनर्स, कहने का मतलब यही है कि इस बात का अगर हम सार निकालें तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, तालमेल बनाना बहुत जरूरी है, भी है, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने की बात हो, खेलने की बात हो, फिटनेस की बात हो, अति अगर किसी चीज की हो जाती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है हमारी सेहत के लिए। फिलहाल एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, आप कहीं जाएगा मत। बहुत ही खूबसूरत गाना है कुड़ी मैनू कहंदी, हार्डी संधू की आवाज में ये गाना हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं जो कि मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में आपने पार्टिसिपेट किया, टॉप 10 तक आप पहुंची, डॉक्टर पिया सचदेवा। सो डॉक्टर पिया सचदेवा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: आपकी बातों में मुझे एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि इंसान को जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अगर आपने कोई कंपटीशन जीत भी लिया है और आपके जो जज्बात हैं वो काबू में हैं, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज कहते ना कि छोटी सी ख्वाहिशें अगर इंसान की पूरी हो जाती है तो वो फैल जाता है, आम भाषा में अगर हम इस बात को ऐसे रखें। तो साथ ही साथ आपने ये भी हमें रखा कि डिस्कस किया कि गुरु और शिष्य का जो तालमेल है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि, और 19 साल का लगभग आपका एक्सपीरियंस है एकेडमिक का, तो ये जो तालमेल है आपको लगता है कि पहले जैसा रहा है या कुछ और बदलेगा? कहीं ना कहीं हम सम्मान में देखते हैं कि टीचर की बात स्टूडेंट्स नहीं सुनते, स्टूडेंट्स के साथ टीचर की कोऑर्डिनेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आता है। पहले के समय को अगर हम देखें तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कह नहीं सकते कि गुरु के चरणों में हम लौट जाया करते थे, गुरु ने जो कह दिया उस बात को मतलब सचितार्थ है। तो आपको क्या लगता है कि कितना समय बदल चुका है और क्या बदलेगा?
1: मुझे लगता है चाहे वो बच्चे हैं या चाहे बड़े हैं, हर इंसान में कुछ नायाब होता है सीखने के लिए। अगर जैसे हम गुरु हैं लेकिन कुछ चीजें हम भी बच्चों से सीखते हैं, तो बच्चों के साथ जब हम तालमेल बिठाते हैं, मुझे बाकियों का तो नहीं पता बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि मैं बच्चों को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ और बच्चों ने भी काफी हद तक इतने सालों में बहुत बच्चे पढ़ाए, बहुत बच्चों को गाइड किया, उनकी मेंटर भी रही, उनकी उनको गाइड भी करती रही। तो मैंने यही देखा कि अगर आप बच्चों के एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें तो चीजें काफी सिंपल हो जाती हैं। इंस्टेड के अगर हम इम्पोज करें उनको कि ये चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें आज के टाइम में नहीं चल पाती, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत अवेयर हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे बहुत प्रोग्रेसिव हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप जिस फील्ड में उनको चाह रहे हैं वो उसी में ही राइज करें। उनके जो कैपेबिलिटीज हैं उनको पॉलिश करना एक टीचर का मैं तो कहूंगी धर्म होता है, कि उनको समझना, उनकी काबिलियत को समझना और किस एस्पेक्ट में वो काबिल हैं, उनको पॉलिश करना एक मेंटर की सबसे बड़ी खूबी होती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने इस सवाल का जवाब दिया जो मैं आपसे जानना चाह रहा था। कि फिर भी हम यही कहेंगे कि लिसनर्स, तालमेल होना बहुत जरूरी है। ट्यूनिंग अगर आपकी जबरदस्त है आपके टीचर के साथ, टीचर की आपके साथ, तो निश्चित तौर पर जो आपके काम है वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मसलन चाहे वो नंबर की बात हो, प्रोजेक्ट्स की बात हो, कुछ भी कोई बात क्यों ना हो, कभी कभी टीचर ऐसे भी मिल जाते हैं कि पर्सनल लाइफ के सजेशन भी आप उनसे मांग रहे होते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैडम प्लीज आप मुझे गाइड करिए।
1: मुझे तो ऐसा लगता है गगन जी कि शायद बच्चों के साथ आपकी जिंदगी जुड़ जाती है, क्योंकि आप उनके साथ माने ना माने कहीं ना कहीं उनकी कुछ सीखें जो उन्होंने इम्बाइब करी या आपने उनसे ली, वो आपके साथ कहीं ना कहीं जिंदगी भर चलती है।
0: बेशक बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जब हम ना समझ होते हैं तो उस वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जब हमें समझ आती है तो हमें वो टीचर याद आते हैं, हमें वो टीचर वाले जो दोस्त हैं वो याद आते हैं कि यार सर या मैडम हमें बहुत अच्छी वो गाइडेंस दिया करती थी, हमें बताया करती थी कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। तो खैर डॉक्टर पिया सचदेवा, आप हमारे स्टूडियो आई, आपने बहुत सारी बातें पर्सनल लाइफ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बताया, इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जाते जाते मैं एक छोटा सा संदेश आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर।
0: यकीन कर, यकीन कर, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कहते ना कि खुद पर और खुदा पर भरोसा है तो निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलेगी जरूर। और जिस तरीके से मैडम ने जो बात कही, एक अनुभव के आधार पर ये बातें आपके सामने रखी है, आप कोशिश करते जाइए, प्रयास करते जाइए और निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: सो लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: रेडियो। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:04 हो चुके हैं, 6 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आपका दिन शुभ में गुजरे, मंगल में गुजरे और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आए हाय,
2: खा लड़ गई कुड़ी, देसी देर काट मर गई।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:07 हो चुके हैं, 6 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौसम में बस आए हाय चाय की चुस्की हो, घर पर हो, ऑफिस की कोई टेंशन ना हो। ऑफिस जब आप निकल रहे हैं तो टेंशन ही टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी बातें करेंगे, लेकिन मौसम का जब मैंने जिक्र किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 6 अगस्त 2026 को ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में मॉनसून सक्रिय है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और तापमान की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बौछार पड़ने की भी संभावना है और जो कि कहीं कहीं रिमझिम बारिश हो रही है और उमस से कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी राहत मिलती नजर आ रही है। और एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो पूरे एनसीआर में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की भी संभावना है। पूरे एनसीआर में आज यही खुशनुमा माहौल है। सच बात तो ये कि जब जल भराव की यानी कि वाटर लॉगिंग की स्थिति हो जाती है तो ऑन रोड हमें दिक्कतें परेशानियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि ट्रैफिक स्लो हो जाता है, ऑन रोड हमें गड्ढे नज़र नहीं आते और जो बिजली के पोल से वहां करंट उतरने की संभावना रहती है। तो कोई जन धन हानि ना हो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। और हाँ, जब आप कालिंदी कुंज से ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहे हैं या नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो एक लेन को क्लोज कर दिया कावड़ियों की वजह से, तो हमारा फर्ज बनता है कि कावड़ियों का हम ख्याल रखें, पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहें और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय संजीव चतुर्वेदी, लेबल टिप्स ऑफिशियल, सो लेट्स लिसन टू इट ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम। सो

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
3: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
4: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। भाई सावन के महीने में हम सब जानते हैं कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, है ना। रिमझिम गिरे सावन और सावन के मौसम में हम ये भी जानते हैं कि कांवड़ियों की आना जाना उनका शुरुआत हो जाती है, भोले बाबा की चारों तरफ धूम होती है, एक खुशनुमा माहौल होता है और प्रकृति को जब हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर प्रकृति भी खिलती हुई नजर आती है, है ना। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और ऐसे समय में हमारा फर्ज बनता है कि कांवड़ को सुचारू, सरल, सुगम, आसान बनाएं। आते जाते मैंने देखा कि साफ सफाई का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग गंदगी कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को अवेयर करें कि यात्रा सरल, सुगम, आसान बने। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है ना। तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि साफ सफाई का ख्याल रखें और कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखें। कांवड़ियों का भी फर्ज बनता है कि शासन प्रशासन का सहयोग करें और हम सब का फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए यात्रा को सरल, सुगम, आसान बनाएं, बहुत ही खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी हम ध्यान रख रहे हैं, यानी कि उनके खाने की भी व्यवस्थाएं हैं, पीने की व्यवस्थाएं, साफ सफाई की व्यवस्था है। तो साफ सफाई में ही ईश्वर का वास होता है। अगर आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को, खुदा को, भगवान को, तो साफ सफाई का आते जाते जरूर ध्यान रखेगा। और बरसात के मौसम में जैसे कि मैंने पहले बताया कि सावधानी बहुत जरूरी है और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ऐसे समय में जो पवित्र नदियां हैं, यमुना हैं, गंगा हैं, उनका जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में लापरवाही मत बरतिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे. हेलो कौन? अरे हम बोल रहे. हम बोल रहे. हम बोल रहे. हम बोल रहे. हम बोल रहे.
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:29 हो चुके हैं। 6 तारीख है यानी कि बृहस्पतिवार का दिन। ऐसे मौसम में निश्चित तौर पर हाँ खाने पीने का बड़ा मन करता है। समोसे हाँ निश्चित तौर पर समोसों का बड़ा मन करता है, चाय की प्याली हो आय। और उसके बाद जब आप अपने वर्क प्लेस पर वापस पहुंचते हैं तो उसके बाद जो एनर्जी के साथ काम करते हैं मुझे लगता है कि बहुत खुशनुमा माहौल बन जाता है। और इसीलिए चाय की चुस्की लेते रहिए, समोसे खाते रहिए। लेकिन ऑफिस का कोई अगर वर्क आपका पेंडिंग है, घर से काम कर रहे हैं, ये बात मैं दरअसल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आते जाते हमने देखा है कि ऑन रोड दिक्कतें परेशानी बहुत ज्यादा हम लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका टाइम 9 बजे है तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आप 9:30 बजे पहुंच रहे हैं, जबकि हम लोग आधा घंटा पहले भी निकल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वजह यह है कि कालिंदी कुंज पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जो 2 लेन है वहां पर 1 वे कर दिया गया है क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही है। अब जब कावड़ यात्रा चल रही है तो जाहिर सी बात है कि हम सबका फर्ज बनता है कि शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए हम उस यात्रा को सरल सुगम आसान बनाए ताकि कोई दिक्कत परेशानी न हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा। यही कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM। कावड़ यात्रा के दौरान बहुत बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि अनावश्यक तौर पर आप हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि आपके सामने पता है कि कावड़ चल रही है, कावड़ यात्रा चल रही है। और अक्सर में देखा है कि छोटी छोटी बातों पर लोग नाराज हो जाते हैं। यही बात सुनो शारदा 90.8 FM आपसे कहता है कि बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहिए और एक दूसरे का सहयोग करते रहिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:37 हो चुके हैं। 6 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की और उस बात का मर्म निकल कर यही आ रहा है कि सारांश यही है कि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में आते जाते अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिएगा। और खाने पीने का जब जिक्र मैं कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुँह में पानी आ ही जाता है ना, लेकिन प्योरिटी का भी ख्याल रखेगा, शुद्धता का ख्याल रखेगा। अगर आप बाहर समोसे खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो परेशानियां ये भी सामने आ रही हैं कि लोगों को चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही, पेट में दिक्कतें हो रही हैं। बारिश का मौसम शुद्धता का, यानी कि शुद्धता पर जोर दीजिएगा, तभी आप अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप बताओ? शुचिता। अरे वो तो हिंदी का अच्छा शब्द है ना, है तो समझो बेटा, सीखो। हाँ, साफ सफाई को हिंदी में बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत गहराई वाली हिंदी में। और ख़ास बात ये कि शारदा विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो निश्चित तौर पर यहाँ लोगों की फुटफॉल हो रही है। बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए, क्योंकि एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को, पढ़ने को, समझने को मिलते हैं। और कल्चरल एक्टिविटी, गेम, प्लेसमेंट, यानी कि बहुत कुछ आपको मिलेगा। और वो तभी मिलेगा जब आप यहाँ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, यहाँ आप आएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज़ हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। और अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो स्कॉलरशिप का भी जिक्र है और दूसरी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं अपने शहर के पड़ोसियों के हालचाल। 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

मुझे लगता है कि कवि तारीफ कर रहा है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:46 हो चुके हैं, 6 तारीख है और हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जब शारदा यूनिवर्सिटी का ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया तो हमारा फर्ज बनता है कि कुछ पढ़ने पढ़ाने की बातें हो जाएं। जी हां, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि MCC द्वारा नीट UG 2026 काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं और आज 6 अगस्त से चॉइस फिलिंग यानी कि विकल्प भरने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। और जो योग्य छात्र हैं, जो काबिल हैं, आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान की जो अपडेट्स हैं वो निकल कर ये सामने आ रही है कि 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2026 तक 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन, शाम 6 बजे तक फीस है ना, और चॉइस फिलिंग कॉलेज चुनना यानी कि 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग यानी कि 12 अगस्त शाम को 4 बजे से 13 अगस्त 2026 सुबह 11 बजे तक ये प्रक्रिया रहेगी। और सीट आवंटन परिणाम यानी कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 अगस्त 2026। कुछ जो जरूरी दिशा निर्देश हैं जैसे कि आधिकारिक जो वेबसाइट है MCC ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप रजिस्ट्रेशन करें और जो उसकी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया 15% ऑल इंडिया कोटा यानी कि AIQ, एम्स, जिपमर और सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटों के लिए है। और अपने जो दस्तावेज हैं, अपनी कागजी कार्रवाई तंदुरुस्त रखेगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते ये भी है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बस आप प्रयास करते रहिए और निश्चित तौर पर यकीन मानिए, खुद पर और खुदा पर यकीन करिए कि आपको एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी जरूर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी सर्विस इंतजार कर रहा है। और चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। आए है माशाल्लाह।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टनम के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। बाबू हाँ बोल दे।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुन

प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसको हम कहते हैं निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भाई जब गवर्नमेंट कह रही है कि इतना रुपया बढ़ना है तो उस मानदंड के साथ या यूं कहें कि जो मानक तय किए गए हैं उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें इनको नज़रअंदाज ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज के दिन इतिहास के पन्नों को जब मैं पलट रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि बहुत ही फेमस हॉलीवुड भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशिका एम नाइट शामला 1970 में आज के दिन इनका जन्म हुआ। दीपिका कक्कड़ जो कि टेलीविजन अभिनेत्री हैं 1986 में आज के दिन का बर्थ हुआ। और राजेंद्र सिंह जो कि 1959 में आज के दिन का जन्म हुआ, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से आप जाने जाते हैं। और इतिहास में 1862 में आज के दिन मद्रास उच्च न्यायालय यानी कि जो कि अब हम चेन्नई कहते हैं कि आधिकारिक स्थापना हुई थी। 1906 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा राष्ट्रवादी समाचार पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन शुरू किया गया था। और 1986 में भारत पहले टेस्ट ट्यूब बच्चे का जन्म हुआ था आज के दिन। और वक्त का इशारा मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, न टेंशन लेने की जरूरत न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरती से प्यार के साथ मोहब्बत के साथ खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरी यानी गगन के साथ सुबह 10 बजे ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर जो कि 1 से लेकर 7 तारीख तक मनाया जा रहा है उस पर एक विशेष कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे सुनना ना भूलेगा। हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी जो डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रणीता स्वरूप शारदा हॉस्पिटल से ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ये विशेष जानकारी सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं, और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
7: नमस्कार, मैं हूं रितिका रुद्र और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चे की शुरुआत होती है सही जानकारी और सही देखभाल से। इसी जागरूकता को आप तक पहुंचाने के लिए आज का हमारा खास प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई चल रहा है स्मार्ट के सहयोग से। इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक पर जो माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ से जुड़ा है, स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर आज भी कई सवाल, भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ लोगों के मन में होती है, तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने और सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रणीता स्वरूप, एसोसिएट प्रोफेसर शारदा हॉस्पिटल।
8: तो मैम मैं पूछना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान बच्चा और माँ दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है?
9: तो जो ये ब्रेस्ट फीडिंग है स्तनपान बच्चा और माँ दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बच्चा और माँ एक यूनिट कहे गए हैं, तो जब माँ स्वस्थ होती है बच्चा स्वस्थ रहता है। अब इसके फायदे क्या क्या है माँ के लिए, सबसे पहले बात करेंगे। माँ प्रेगनेंसी में कई सारा एक्स्ट्रा वेट गेन कर लेती है, तो जो माँ पूरे अच्छे तरीके से पहले 6 महीने में बच्चे को स्तनपान कराती है वो जल्दी वेट लूज कर पाती है। दूसरी चीज का जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की शक्ति देता है, जैसे ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर उन माओ में कम देखा गया जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छे तरीके से दूध पिलाया। साथ ही कई माओ के छातियों में गांठ दूध ना पिलाने से जो बन जाती है वो भी ये रोकता है। बच्चे के लिए तो इसके मल्टीपल फायदे हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि बच्चे के पहले टीके के रूप में काम करता है, ये बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, बच्चे की बढ़ोतरी में हेल्प करता है, चाहे उसका वजन हो चाहे उसकी लंबाई हो, एंड बच्चे का पूरा पोषण माँ के दूध अकेले से पूरा हो जाता है।
8: मैम हमारे पास ना एक मिथ है कि पहला जो दूध होता है माँ का वो थोड़ा येलोइश होता है, वो अच्छा नहीं है, वो फेंक देना चाहिए, ये सच है कि नहीं?
9: ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक मिथक है, जैसे कि पहला गाढ़ा दूध फेंक दिया जाए बच्चे को ना दिया जाए, पर ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। जो बच्चे को पहला गाढ़ा दूध माँ का मिलता है तो उसको कई सारे फायदे होते हैं, उसको ये क्षमता उसकी बढ़ती है कि कई रोगों से लड़ सके, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती है इस दूध में। दूसरा ये होता है कि ये बच्चे को हर तरीके के ग्रोथ में आगे फायदा करता है, ठीक है? तो ये पहला गाढ़ा दूध नहीं फेंकना है।
8: मैम हम ये भी पूछना चाहते थे कि कितना टाइम तक हमें ये ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कंटिन्यू करना चाहिए?
9: तो ये स्तनपान हमें शुरू के पहले 6 महीने पूर्णतः माँ का दूध ही बच्चे को देना है, इवन हमें पानी तक ऊपर से बच्चे को नहीं देना है।
8: तो मैम बहुत लोग बोलते हैं कि पानी देना अच्छा है प्यास तो लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है?
9: ऐसा कुछ नहीं है, जो माँ का दूध होता है वो हर चीज में पूर्णतः बच्चे के लिए ठीक है, पानी की मात्रा भी उसमें होती है, उसके भूख के लिए भी सब कुछ है। इवन अप्रैल मई जून जिसमें गर्मी बहुत होती है तब बोलते हैं नहीं नहीं बच्चे को ऊपर से पानी पिला दो, तो ऐसा कतई नहीं करना है, बच्चे को सिर्फ दूध माँ का ही देना।
8: मैम ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मतलब स्तनपान के दौरान हमारी जो माएं हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स के सलूशन करना चाहिए?
9: कई सारी जो है प्रॉब्लम्स है माओ को, सबसे पहले तो होता है कि उनके अंदर शरीर में और हार्मोनल लेवल पे इतने बदलाव हो रहे हैं, तो एक तो ये प्रॉब्लम बहुत मेजर देखी गई है कि बहुत सारे मूड चेंजेस होते हैं, तो अगर उन्हें सही तरीके का सपोर्ट सिस्टम घर वालों से, हस्बैंड से, आसपास के लोगों से ना मिले, तो वो एक ऐसे काम करता है कि बच्चे के दूध पिलाने में उनको रोकेगा, क्योंकि अगर उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा होता है उनके अपने शरीर से जुड़े चेंजेस जो हैं, जैसे कि जो उनका स्तन है उसमें अगर कभी गांठ पड़ जाए, कभी निकल है जो फ्लैट होता है तो माएं दूध पिलाना छोड़ देती हैं, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो हर समस्या का एक समाधान होता है, अगर उसे सही तरीके से एड्रेस किया जाए, माँ को सपोर्ट किया जाए, तो वो चीज बेहतर बनाई जा सकती है।
8: मैम एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को उनकी फैमिली या डॉक्टर्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं?
9: फैमिली तो ऐसे सपोर्ट कर सकती है कि जैसे अगर कोई माँ है जिसने अभी भी डिलीवर किया है, तो नॉर्मली डिलीवर किया है तब तो वो जल्दी उठने बैठने और सारी चीजें करने के क्षमता में आ जाती है, लेकिन अगर सिजेरियन से कोई माँ डिलीवर करती है तो शुरुआती 10 दिनों में तो उसको बैठने तक में काफी दर्द होता है, तो माँ को पूर्णतः पौष्टिक आहार दें, उसको जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही है तो थोड़ा उसको पोजीशन बनाने में कि बच्चे की गर्दन पीठ संभाली जा सके, उसको उठ के बैठने में कई तकिए लगा के, एक तो ये हो गया, एक तो फिजिकल तौर पर सपोर्ट हो गया, एक मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि माँ को स्ट्रेस फ्री रखा जाए, किसी तरीके का तनाव ना दिया जाए, क्योंकि तनाव भी माँ के दूध बनने पे गलत असर डालता है, तो माँ को खुश रखें। एंड डॉक्टर्स तो हमेशा अवेलेबल है, जब भी माँ चाहे एक डॉक्टर से परामर्श लेगी तो जिस तरीके की समस्या होगी उस तरीके का समाधान दे देंगे।
8: मैम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को अपने डाइट में अपने आहार में क्या क्या चीज जोड़ना चाहिए जिससे ब्रेस्ट फीडिंग और बेहतर हो सके?
9: ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इससे जुड़े मिथक कई सारे हैं। कई सारी माओं को सिर्फ उबला खाना दिया जाता है, या कई माएं होती हैं जिनको बोला जाता है तुम बहुत ज्यादा चटपटा या मिर्च वाला खाना मत खाओ, तो कहने का मतलब हर चीज मॉडरेशन में ठीक है, तो माँ को एक संतुलित आहार लेना है, प्रॉपर जो रोटी सब्जी दाल चावल सलाद दही 6 चीजें आपकी होगी और फल हो गया वो माँ को लेना है, बाहर का फूड थोड़ा सा जैसे डिब्बे का जूस ये सब अवॉइड करें, लेकिन घर पे बना सारा खाना माँ ले सकती है।
8: मैम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ स्तनपान के साथ ऐसा क्या क्या मिथ यानी कि भ्रम जुड़े हुए हैं जो लोगों को बिलीव नहीं करना चाहिए?
9: कई सारे भ्रम है ऐसे, पहला तो जैसे हमने गाढ़ा दूध फेंकने की बात की, दूसरा एक ये खान पान से रिलेटेड हमने बात की, तीसरा जैसे हमने कहा कि वक्ष के आकार पर भी कई कमेंट करते हैं कि अगर माँ बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा सूखी हुई है तो कहेंगे दूध नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा अगर माँ को खांसी जुकाम इस तरह की कोई भी बीमारी है तब भी कई बार माँ और बच्चे को अलग कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आज की एक माँ मास्क लगा के भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। दूसरा जानवर का दूध देने के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कि अगर जानवर का दूध देंगे बच्चा ज्यादा मजबूत बनेगा, तो ऐसा कतई नहीं है। तीसरा बोला जाता है जो ऑफिस जाने वाली माएं हैं उनको कई बार 2 या 3 महीने पे ही अपना ऑफिस रिज्यूम करना पड़ता है, तो उस टाइम पे उनको ऊपर का दूध शुरू करा दिया जाता है, जबकि हमें बताना चाहिए कि ये जो माँ का दूध है वो हम एक्सप्रेस करके स्टोर भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं उसके, तो उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते।
8: तो मैं लास्टली ये पूछना चाहूंगी कि न्यू मदर्स को या फैमिलीज को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है माँ और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए?
9: तो जो मैसेज होगा वो शुरुआत यही होगी कि माँ और बच्चे को हमेशा एक यूनिट के रूप में देखें, अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ, तो अगर माँ पौष्टिक आहार लेगी, अपनी सेहत का ध्यान रखेगी, उसके आसपास के लोग उसका मानसिक और सेहत का ध्यान रखेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। दूसरा माँ का दूध जो है लिक्विड गोल्ड बोला गया है, इसीलिए पहला टीका बोला गया है इसीलिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए पूर्णतः हर रूप से संपूर्ण है।
8: मैम बहुत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ जुड़ने के लिए। तो आज की इस बातचीत से हमें यह समझ आया कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान सिर्फ बच्चे की न्यूट्रिशन से जुड़ा टॉपिक नहीं है, बल्कि माँ और बच्चे दोनों की बेटर हेल्थ और स्ट्रांग फ्यूचर की एक इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान से जुड़ी कई जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी इम्पोर्टेंट और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।
10: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.
11: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
12: जी।
11: प्लीज कैरी ऑन।
12: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
11: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
12: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
11: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़े। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
13: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
14: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
13: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी

0: बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे? जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
1: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
0: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
1: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
0: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
0: शिशु की सही देखभाल से फर्क
1: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं

0: का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।

0: दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

रामगढ़ी की तैयारी करता है। चलते चलते अब तो रामगढ़ी की सीमा में आ गया और ये मन में सोच रहा है, हाय भगवान, मैं उन मातृ पिता से कैसे कहूंगा

प्रेमी सजनों, घर पहुंच गए। जैसे ही देखा उर्मिला के पिता यादराम ने कि हमारे घर पुलिस वाले आए हैं। आखिर हमने कौन सी खता की है? सम्मान किया और कैसे बूझने लगे। मेहरबानों, बेटे वाले को भगवान कभी अमीरी न दे। बेटे वाले को भगवान

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: अरे

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
2: हाँ, भूख ही लग रही होएगी।
1: तो यार शहद दे दे।
2: हाँ, तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
3: भाई पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने के होने से पहले बालक है, माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
2: संगीता की भी तो बालक हुए हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
3: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है, वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे, स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
4: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुनो शारदा 90.8 FM ने स्मार्ट के साथ मिलकर एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है हिंसा को नो। हिंसा को नो के अंतर्गत अभी तक हम 5 प्रोग्राम ला चुके हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम था बेटियां हैं तो वंश हैं, जहां पर हमने परिवार में बेटियों के होने के महत्व के बारे में बातें की थी। दूसरा प्रोग्राम था बालिका यावद, जहां हमने बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जिससे लड़कियां जूझती हैं, जिससे लड़कियां गुजरती हैं, उन बारे में बात की थी। उसके बाद हमने जो प्रोग्राम चलाया था उसका नाम था खतना, धर्म नहीं दर्द, जिसे हम इंग्लिश में FGM के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। इसमें हमने बात करी कि किस तरह से धर्म के नाम पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर बाल उम्र में शारीरिक दर्द, जिसको एक रिवाज का नाम, एक विश्वास का नाम दिया जाता है, और लड़कियां इस चीज से जूझ रही हैं। हमने बात करी थी कि क्या कानूनी सलाह है इसके बारे, और हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी। हमारा अगला प्रोग्राम था पितृसत्ता, जहां पर हमने बात करी थी असामान्य व्यवहार, असामान्य दिशा, लड़कों और लड़कियों के बीच में जो असामान्य व्यवहार है जिसे हम पेट्रियार्की भी कहते हैं, जहां पर मर्दों का बोलबाला ज्यादा होता है, जहां पर मर्दों को एक स्ट्रांग पावर की तरह देखा जाता है, जो औरतें या जो महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं उनके बारे में बातें करी थी। फिर हमारा अगला प्रोग्राम था माँ बाहर जाना है, जहां हमने बात करी थी कि किस तरह से एक ही घर में रहने के बावजूद उन्हें अलग दर्जे से देखा जाता है, जिसमें हमने बात करी थी घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवाल्य सुरक्षा के बारे में। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कच्ची उम्र की शिक्षा के बारे, किस तरह से कच्ची उम्र में बहकना बड़ा आसान होता है और कैसे शिक्षा हमारे लिए जरूरी है लेकिन कई बार वो एक अलग ही रूप ले लेती है। तो आइए इस पर आधारित सुनते हैं ये प्रोग्राम।
6: बहके सवाल और शरीर में बदलाव इस उम्र में आम बात है, लेकिन इसको नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं है। जितना मुश्किल इस उम्र के बच्चों को समझाना है, उतना ही मुश्किल उनके लिए समझना है। बेहतर होगा माँ बाप उनके दोस्त बन जाएं, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को दोस्ती ज्यादा भाती है, और दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ हम अपने दिल की बात बिना हिचक कर बोल देते हैं, और इस दौरान आप अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए आइए इस कविता के द्वारा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इस उम्र के सवालों को। बदली हूँ मैं, बदले मेरे विचार, कैसे समझाऊँ मैं अपने दिल की बात। शर्म है आँखों में पर दिल में है सवाल, पूछ लूँ क्या कहीं हो ना जाए बवाल। नया सा एहसास छुआ उसने मुझे आज, नया सा एहसास छुआ उसने मुझे आज, क्या सही है ये बात। खोई हूँ मैं अपने सपनों के शहर में, और नहीं करनी मुझे इस बात में और बहस। इतने सारे सवाल, क्या जवाब दे पाओगे आप?
7: मैथ्स टीचर की नजर और वो हाथ आज भी याद है। क्या हुआ था उस शाम, क्या सुन पाओगे वो दास्तान?
8: सोचती हूँ मैं, क्या था उस टीवी पे जिसे आंखें दिखाकर बंद किया था वो एड?
6: क्या सही क्या गलत, इसमें ही झुलस रही हूँ मैं आज।
7: जिम्मेदारी के लिए बड़ी और सवालों के लिए छोटी हूँ मैं, माँ कहती है अब बच्ची नहीं हूँ मैं।
6: मुझे दोस्तों की बातें सच्ची और बड़ों की बातें कच्ची लगती हैं। आखिर नशे में डूबी शाम किसे अच्छी नहीं लगती है? और जवाबों में चुप हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करते ना, नहीं चाहिए मुझे आज, क्योंकि उम्र है कच्ची और हूं मैं मासूम। कैसे बचाऊंगी खुद को गुमसुम, ना जान पाऊंगी कौन है अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत, जब तक छुपाओगी मुझसे इस बदलाव का सच। या फिर हो सकती है ऐसे आपकी बच्चे की कहानी। चलिए आइए इस कहानी को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं।
2: यार त्रिशा तो कितनी बोरिंग है।
9: क्यों?
2: क्योंकि तो पुराने सोच की है।
9: क्या मतलब है तेरा?
2: मतलब मेरा और जानवी हम दोनों का बॉयफ्रेंड है, पर तू अभी तक सिंगल है यार।
10: हे टीना चलना, तेरे को अमन बुला रहा है।
9: यार रुक जाओ ना टीना, थोड़ी देर में अकेली हो जाती हूँ।
2: इसीलिए ना तुझे समझा रही थी कि बॉयफ्रेंड बना ले।
9: यार मैं अभी तो 9th क्लास में हूँ।
2: कर दी ना गवारों वाली बात, आजकल लोगों के 3rd-4th क्लास में बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और हम तो फिर भी 9th क्लास में। अच्छा सुन, मेरा बॉयफ्रेंड का एक फ्रेंड है जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, बोल तो मैं उसको तेरा नंबर दे दूं।
9: ठीक है, पर लड़के की फोटो तो दिखा।
2: ये देख
9: यार, ये तो मेरी एज से काफी बड़ा लग रहा है।
2: यार देखो शादी थोड़ी करनी है, बस टाइम पास ही तो करना है।
9: फिर भी
2: यार अगर इतना सोचेगी तो लाइफ में मजे कभी नहीं कर पाएगी। अच्छा चल मैं जा रही हूँ, अमन मेरा वेट कर रहा है।
9: यार मैं हर बार अकेली हो जाती हूँ, न्यू ईयर हो या वैलेंटाइन वीक, जानवी और टीना तो निकल जाते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या टीना ठीक बोल रही थी, मुझे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। और सही तो है, टाइम पास में कोई तो चाहिए, तो बॉयफ्रेंड ही सही। चलो टीना को कॉल करके बोलती हूँ।
2: हेलो
9: हेलो, तू बोल रही थी ना कि कोई सिंगल है जिसको मेरा नंबर देने की बात कर रही थी तू?
2: ओ अमन का फ्रेंड विशाल, जिसकी फोटो दिखाई थी तुझे मैंने।
9: हाँ यार मैंने सोचा, फिर मुझे लगा कि मुझे भी कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए।
2: ठीक है मैं उसको तेरा नंबर दे दूंगी, वो तुझे मैसेज कर देगा।
9: ओके।
2: ओए तेरे को विशाल का मैसेज आया था क्या?
9: हाँ यार, बट वो बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था और वो वैसे भी पिक्स मांग रहा था।
2: हाँ तो यार दे देना, वरना वो गुस्सा हो जाएगा।
9: नहीं यार।
2: देख यार मैंने भी दी थी और वो अच्छा है, मिसयूज नहीं करेगा तेरी पर्सनल पिक्स का। और मैं हूँ ना, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। और अगर तू नहीं करेगी तो वो तुझसे बात नहीं करेगा यार, वरना तो तू ऐसे ही सिंगल रह जाएगी। चल बाय
9: बाय।
2: ओए बोरिंग पर्सन।
9: हाय टीना।
2: तूने दिया पिक्चर्स कल विशाल को?
9: हाँ यार, आखिर आई लव हिम।
2: चल यार।
9: यार उसने मेरे से 10,000 मांगे और बोला बहुत इम्पोर्टेंट है।
2: तो यार दे दे, आफ्टर ऑल यू लव हिम, और वो तुझे वापस कर देगा, डोंट वरी।
9: पर यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
2: तो मम्मी से बोल दे कि तुझे कोई कोचिंग के लिए पैसे चाहिए।
9: नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल सकती।
2: देख त्रिशा, बॉयफ्रेंड के लिए तो तुझे इतना करना पड़ेगा।
9: ओके ट्राई करती हूँ। मम्मी मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग करनी है, मेरे काफी फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे 10,000 चाहिए।
6: बेटा देखो अभी थोड़े दिन रुक जाओ, पापा की सैलरी भी नहीं आई है अभी तक और कोरोना भी फैला हुआ है, ऐसे में हम तुम्हें परमिशन नहीं दे सकते हैं।
9: मम्मी प्लीज।
6: एक बार बोल दिया ना नहीं, और तुम कब से जिद करने लगी, पहले तो ऐसे कभी नहीं किया। जाओ अपने कमरे में।
10: हे त्रिशा।
9: हाय जानवी।
10: सुन टीना और मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे, तू भी चलना, विशाल भी आ रहा है।
9: ओके।
2: यार जानवी चल, हम थोड़ी प्राइवेसी दे देते हैं न्यू लव बर्ड्स को।
10: ओके ओके क्यों नहीं।
11: हाय त्रिशा।
9: हाय।
11: क्या हुआ, कैसे हो तुम?
9: यार फोन पे तूने बोला था ना कि तुझे 10,000 की जरूरत है,
11: वो ले आई तुम? यार तुम कितनी अच्छी हो, आई लव यू सो मच यार।
9: नहीं यार मम्मी ने मना कर दिया।
11: देख त्रिशा, अगर तुम इसे प्यार करती तो सचमुच तो लेकर आती, लेकिन तुम इसे प्यार नहीं करती इसलिए तू पैसा लेकर नहीं आई है।
9: नहीं विशाल, सच में मैंने बहुत ट्राई किया बट मम्मी नहीं मानी।
11: ठीक है, मम्मी तो नहीं मानी, लेकिन मुझे पता है कि तुमसे कैसे पैसे निकलवाने हैं।
9: मतलब?
11: याद है तूने मुझे कुछ अच्छी अच्छी पिक्स भेजी थी?
9: हाँ, क्योंकि आई लव यू।
11: नी, यू डोंट। अब वो सारे पिक्स मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा।
9: नहीं विशाल, मैंने बहुत ट्रस्ट करके वो पिक्स तुम्हें दी थी।
11: और मैंने भी तुमसे ट्रस्ट करके ही पैसे मंगवाए थे, और अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो पिक्स सोशल मीडिया पर घूम रही होंगी, समझी?
9: मम्मा प्लीज, मुझे कोचिंग के लिए पैसे दे दो।
12: एक बार बोल दिया ना, तुम्हें बात समझ नहीं आती? नहीं है हमारा भी इतना बजट, और एक बार और जिद की ना तो पापा से शिकायत कर दूंगी।
10: यार त्रिशा, विशाल ने तेरी सारी पर्सनल पिक्स सोशल मीडिया पे डाल दी यार।
13: ये तो बहुत मासूम बनती थी, ऐसे ही होगा जब अपने से बड़े लड़के को बॉयफ्रेंड बनाओगी।
8: बेचारी, शकल भोली और कर्म तो देखो।
6: आइए एक और कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। ये है ऋतिक, जिनकी लाइफ शुरू ही किताबों के साथ होती है। लोग न्यूज़पेपर विद चाय का कॉम्बो लेते हैं, लेकिन इनको ताने प्लस बुक्स का कॉम्बो दिया जाता है हर सुबह। चलिए आइए इनकी कहानी सुनते हैं।
14: मम्मी चाय देना।
8: हाँ हाँ, बस तुझे चाय ही तो पिलाती रह जाऊं, तेरे से पढ़ाई तो होती नहीं। 3 साल से देख रही हूँ क्लास में सेकंड ही आ रहा है। सुन, अगर इस बार तू सेकंड आया ना तो घर आने की तुझे जरूरत नहीं है।
15: शर्मा जी रोज मुझे सुनाते रहते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट आया है और अब मैं उसे अब्रॉड भेजूंगा, बट मेरा बेटा 3 साल से सेकंड ही आ रहा है। मुझे नहीं लगता तू कभी भी फर्स्ट आ पाएगा।
14: पापा मैं ट्राई कर तो रहा हूँ, आप ऐसा बोल के मेरा कॉन्फिडेंस लो मत करिए बार बार।
15: कॉन्फिडेंस तो तू मेरा लो कर देता है, और वो भी शर्मा जी के सामने। अगर इस बार तो फर्स्ट नहीं आया है तो घर पे ही बैठना, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
14: ठीक है पापा, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार पूरी जीत जान लगा दूंगा फर्स्ट आने के लिए।
15: नहीं तो पता है ना, पढ़ाई छुड़वा दूंगा तेरी।
14: ओके बाय पापा, एग्जाम देने जा रहा हूँ।
15: ठीक है,
14: एग्जाम तो इतना अच्छा नहीं गया, बट अब रिजल्ट ही बताएगा कल क्या होता है। वैसे मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार।
16: क्या यार ऋतिक, तू इतना टेंशन लेता है जबकि तू पूरे क्लास में सेकंड आता है।
14: यार यही तो प्रॉब्लम है कि मैं हर बार सेकंड आता हूँ, फर्स्ट नहीं आ पा रहा, और मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर दिया है कि मैं फर्स्ट ही आऊंगा, और अगर इस बार मैं फर्स्ट नहीं आ पाया ना तो शायद से मेरी पढ़ाई ही रुक जाए।
16: क्या?
14: हाँ, और मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर दिया है फर्स्ट आने का, और कल रिजल्ट है, अब कल ही बताएगा क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है।
16: कोई नहीं यार, मुझे भरोसा है तू इस बार फर्स्ट ही आएगा।
14: चल बाय यार। यार मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मैं इस बार फर्स्ट नहीं आ पाया। शायद पापा सही ही बोलते हैं कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। फिर से पापा को शर्मिंदा होना पड़ेगा सबके सामने। यार ऐसे जीने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। यार क्या मुंह लेके जाऊंगा पापा के सामने,
15: इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कहां से आता है ये ख्याल, क्या फर्स्ट आना जान से बढ़कर हो गया है? इतना प्रेशर हम लाते कहां से हैं? अगर देखा जाए तो आजकल हर जगह कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन खुद को बेहतर साबित करने का, और इन सब के बीच में हम अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं अपने जीने का मकसद। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जिस तरह से मार्क्स जरूरी हैं, उस तरह से और भी काफी चीजें हैं जो जरूरी हैं। पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है, लेकिन खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलम, म्यूजिक और बहुत कुछ है जो लाइफ में बहुत जरूरी है। कैसे इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए, बच्चों को आज ये सिखाना जरूरी है कि फर्स्ट आने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका खुश रहना, और इस उम्र में यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि माँ बाप उनके दोस्त हैं, ताकि वो अपने माँ बाप से हर एक बात, हर एक परेशानी, अपनी ख्वाहिशें जाहिर कर सकें। और माँ बाप अकेले इस चीज के जिम्मेदार नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। हमारे स्कूल्स में मोरल साइंस जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, जो कि जिंदगी में मोरल साइंस की ज्यादा जरूरत है हमें। इसीलिए मोरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को

0: को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो गया है। हम हमेशा कहते हैं कि स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है और बच्चे जो इतना टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं स्कूल में, जिंदगी में वही काम आती हैं। और अगर स्कूल में ही हम ऐसी चीजों पे फोकस ना करें तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी ट्रैक से उतर जाती है। इसीलिए हमें ऐसी चीजें स्कूल में फोकस करने की बहुत जरूरत है। और कंपैरिजन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आज हर एक बच्चा दूसरे से कंपेयर करता है अपने आप को। हमेशा एक कंपटीशन की लहर दौड़ती रहती है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। कब वो हद पार कर जाती है और कब वो उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर देती है कि वो उस चीज से ब्लैकमेल होने लगता है। हम हमेशा कहते हैं कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी एक खासियत है, हर बच्चा खुद में स्पेशल है। अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो हो सकता है कोई खेलने में अच्छा हो सकता है कोई म्यूजिक में अच्छा हो। इस चीज पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और इन सब चीजों की वजह से आज जो हमारा टीन है, जो हमारे 13 से 19 साल के बच्चे हैं, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और न जाने किन किन तरह की तकलीफ उन्हें परेशान कर रही है। और ये तो कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में बातें कर रहा हूँ, लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जिनसे आज के बच्चों को दूर रखा जा सकता है, अगर हम स्कूल में, घर पर, पेरेंट्स और टीचर सही चीज पर फोकस करें और बिल्कुल उनके दोस्त बनकर रहें, ताकि वो अपने परेशानी अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से शेयर कर सकें, तो हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और ऐसी उम्र में आजकल के बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है। वो किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करते, वो किसी से इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर डर रहता है और उसी चीज के पीछे अपनी जिंदगी का बहुत अहम साल या अहम वक्त जाया कर देते हैं। और कहीं बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि अगर उस टाइम दूसरी चीजों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज जिंदगी बदल चुकी होती। और ये सब सिर्फ बात ना करने से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बात ना करने से ये चीजें होती हैं। इन सारी बातों को बताने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को समझेंगे, आप उनके दोस्त बनेंगे, उन्हें डांटने या सजा देने से पहले उनको समझने की कोशिश करेंगे और किसी भी परेशानी में अगर हैं तो वहां से उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। और हमारे ये स्मार्ट के साथ सीरीज ऑफ प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगली बार हम आपसे फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे एक नए मुद्दे पर, जिसका नाम है कैसे बचें मनचलों से, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेट के जाल के बारे, अच्छा स्पर्श और कुछ बुरे स्पर्श के बारे, और कुछ रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और उनके बाद जो चुप्पी साध लेते हैं उसके बारे। तब तक आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। धन्यवाद।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही

0: हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है. सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो. पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया. इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा. बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको. इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज. और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री. मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए. इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। आप सब मिलकर लिखते हैं,
2: खोने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था वो समय, इंसान और संबंध।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है श्रोताओ, किसी वस्तु के खोने के बाद ही हमें उसके असली मूल्य का पता चलता है। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर और कुमारी सुजाता पोहारकर।
3: पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये और तन्मय गजभिये।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी, पहले श्रोता मित्रों को धन्यवाद दे दें कि ये भी जानिए श्रृंखला को उन्होंने बहुत बहुत सराहा है।
2: जी अजीत जी, सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं ये भी जानिए श्रृंखला के प्रति आपकी सराहना और रुझान के लिए। धन्यवाद श्रोताओं।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में श्रोताओं, आज हम एक बड़ी रोचक बात करेंगे।
2: जी श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी सब्जी की जो हमारे देश में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके बिना अक्सर हमारा भारतीय भोजन पूरा ही नहीं होता।
3: जी ये तो है।
2: तो उत्तर भारत का भोजन हो या दक्षिण भारत का, जरा सोचिए आपके मन में किस सब्जी का नाम आता है। सोचिए।
3: तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बता देते हैं, यदि आपके मन में आलू का नाम आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं।
2: जी
3: लेकिन यदि हम आपको आज ये बताएं कि आलू दरअसल भारतीय सब्जी है ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा झटका तो जरूर लगेगा।
2: बिल्कुल, अगर पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है तो मुझे लगता है नाम आलू का ही आएगा।
3: बिल्कुल,
2: लेकिन आलू मूल रूप से भारत की उपज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं कहानी आलू की और जानते हैं कि आलू कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, कृषि का इतिहास बताता है कि आलू की खेती आज से 8000 साल पहले दक्षिण अमेरिका में, विशेष रूप से एंडीज पर्वत श्रृंखला के पेरू और बोलिविया क्षेत्रों में शुरू हुई थी। हो रहा है ना आश्चर्य? अब सवाल उठता है कि फिर आलू भारत में कैसे आया।
2: तो आपको बता दें कि आलू भारत में यूरोप के व्यापारी लेकर आए। दस्तावेज बताते हैं कि भारत में आलू का आगमन मुगल बादशाह जहांगीर के समय में हुआ।
3: भारत में 16वीं शताब्दी तक किसी भी किताब में आलू का जिक्र नहीं मिलता है।
2: जी।
3: आपको विश्वास नहीं होगा कि खिलजी साम्राज्य में नियतनामा नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी।
2: इस पुस्तक में विशेष रूप से उत्तरी भारत के खान पान का इतिहास है। इस किताब में 8 प्रकार के समोसों का जिक्र मिलता है, लेकिन आलू का उल्लेख कहीं नहीं है। तो फिर से वही सवाल, आलू कहाँ से भारत में आया।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आलू को यूरोपियन पुर्तगाली व्यापारी भारत लेकर आए और उसकी खेती पश्चिम भारत और नैनीताल में करनी शुरू की।
2: जी।
3: और आलू भारतीय संस्कृति और खान पान में ऐसा घुला मिला कि लगता है जैसे वो यहीं की पैदाइश है।
2: बिल्कुल, लोगों को पता ही नहीं है कि इसे लोकप्रिय करने में ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आलू की दुनिया भर में 4000 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। एक बड़ी रोचक जानकारी ये भी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू न तो सब्जी है न फल है।
3: तो क्या है?
2: ये एक तना है।
3: आलू एक तना है। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है,
2: आलू को भारत में लाने वाले कौन है?
3: विकल्प है स्पेन के व्यापारी,
2: पुर्तगाल के व्यापारी,
3: अंग्रेज व्यापारी
2: और दक्षिण अमेरिका के व्यापारी।
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आलू को भारत में लाने वाले कौन हैं?
3: विकल्प हैं
2: स्पेन के व्यापारी,
3: पुर्तगाल के व्यापारी,
2: अंग्रेज व्यापारी
3: और दक्षिण अमेरिका के व्यापारी।
2: 8800440559 है हमारा IVRS फोन नंबर
3: और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप अपना उत्तर हमें तत्काल इन संपर्कों पर भेज सकते हैं।
2: जी तो अब सुनते हैं आज के कार्यक्रम। तो सबसे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम साहसी सोनिया। साहसी सोनिया, श्रोताओं आपको बता दें कि भारत के उन बहादुर बच्चों के जीवन पर आधारित हमारी एक श्रृंखला है जिन्हें उनके साहसिक कारनामों के लिए भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कारों से जीवित या मरणोपरांत सम्मानित किया गया है।
3: तो श्रोताओं, इसी कड़ी में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम साहसी सोनिया। तो आइए सुनते हैं बाल कन्या सोनिया की बहादुरी की गाथा।
0: लिया नहीं लिया आपने कुछ लिया कि नहीं काटा
4: डॉक्टर साहब की पार्टी होती है
5: भाई तुम्हारे यहाँ हर साल पार्टी में मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ कि तुम्हारे यहाँ का केक लाजवाब होता है।
4: सुनिए बेटे एक काम करो अंदर जाओ और शर्मा जी के लिए और केक लेके
5: लाओ बेटे लाओ
6: और केक खाकर चल पड़ना।
4: अच्छा बेटे बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन की है।
7: अच्छा बेटे एक बार फिर आपको जन्मदिन मुबारक।
4: अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। कहो सोनिया बेटा कैसी लगी अपनी जन्मदिन की पार्टी?
8: हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी पापा। यहाँ आराम में बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबके साथ। काश मुझे पटना ना जाना पड़े।
9: पटना में तो तुम पढ़ती हो बेटा, वहाँ तो तुम्हें जाना ही होगा।
4: अच्छा सोनिया बेटा अब जाओ और सो जाओ, रात बहुत हो गई है।
8: जी पापा। मम्मी सनत और शालिनी कहाँ हैं?
9: उन्हें नींद आ रही थी बेटे, जब तुम लोग गाना गा रहे थे ना तभी मैं उन्हें सुलाई थी।
8: तो ठीक है मम्मी, मैं भी जाती हूँ सोने।
4: अच्छा बेटे। मैंने कहा जी हम भी आपकी कुछ मदद करवा दें, कुछ बर्तन उठा दें।
9: नेकी और पूछ पूछ। काम तो हम सबको मिलजुल कर ही करना चाहिए ना।
8: अरे मर गई।
4: क्या हुआ?
8: गैस पर पानी गर्म करने को रखाई थी और भूल गई। मैं अभी आई।
4: अच्छा सुनो वो सिलेंडर ठीक करने वाला आया था कि नहीं?
8: नहीं आज भी नहीं आया।
4: अच्छा ठीक है तुम गैस को हाथ मत लगाना, मैं आता हूँ गैस बंद करने के लिए।
8: ठीक है
10: हटो एक तरफ हटो मैं बंद करता हूँ। अरे एक तरफ हटो ना।
8: लो ना। अरे पीछे हट जाओ सिलेंडर में आग लग गई है।
10: अरे पहले तुम हटो ना, बाहर निकलो।
11: क्या हाल हो गया डॉक्टर आनंद के घर का भाई?
12: आनंद का तो बहुत बुरा हाल।
5: अरे सोनिया बेटे ये सनत और शालिनी कहाँ हैं?
8: वो दोनों तो अंदर ही रह गए। चारू भी लेकर आती हूँ।
12: आप रोज नहीं घबराओ, सब ठीक होगा, भगवान करेगा सब ठीक हो जाएंगे, आप चिंता।

0: मैं कहाँ हूँ?
1: घबराओ नहीं बेटी, तुम अस्पताल में हो, तुम जल गई थी, अब तुम ठीक हो।
0: मेरी मम्मी पापा
1: सब लोग ठीक हैं, मम्मी बहन भाई
0: और मेरे पापा,
1: वो
0: क्या हुआ मेरे पापा को?
1: बड़े दुख की बात है बेटी, हम उन्हें बचा नहीं सके, ज्यादा जल गए थे
0: पापा।
1: पर बेटी तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे भाई बहन की जान बच गई, तुम सचमुच में बहादुर हो बेटी।

जी हाँ, सोनिया, बिहार की रहने वाली ये नन्ही लड़की सोनिया केवल 12 वर्ष की ही तो थी जब स्वयं राष्ट्रपति ने उसे वीरता पुरस्कार दिया।

0: सोनिया, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। तुम्हें हमारी ढेर सी शुभकामनाएं।
1: साहसी सोनिया, अभी आपने सुना ही ये कार्यक्रम, और अब प्रस्तुत है उर्दू के महान शायर और साहित्यकार मिर्जा असादुल्ला खान गालिब के जीवन और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों का रोचक विवरण प्रस्तुत करता हुआ ये कार्यक्रम।
2: मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। गालिब उर्दू के चंद सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। वो इब्तिदा में असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब इख्तियार किया। उन्होंने उर्दू फारसी दोनों जबानों में शेर कहे हैं। उन्हें आम रास्ते से अलग नई राह बनाकर चलने का शौक था।

गालिब के कलाम को अमूमन मुश्किल समझा जाता है, फिर भी उनके अशार की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों की जबान पर है।

मिर्जा गालिब में उर्दू नसर की अदबी शान, अपने जमाने के हालात, अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगु गरज बहुत कुछ मिलता है, जिसके बाइस गालिब हमारे सबसे बड़े शायरों में शुमार होते हैं।

0: दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ।
1: गौर करने की बात,
0: इस गजल में सादगी बयान और आम गुफ्तगू का अंदाज है और कहीं कहीं खुद कलामी का अंदाज भी है। खुद कलामी से मुराद अपने आप से बात करना है।
1: गालिब गजल के मुमताज शायर हैं। कम से कम लफ्जों में बात को कहना, सादगी के साथ साथ मानी की गहराई उनकी शायरी की अहम खसूसियात हैं।
0: दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। है खबर गरम उनके आने की, है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। जान दी दी हुई उसी की थी, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सरा ना हुआ, आज गालिब गजल सरा ना हुआ। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ।

0: गौर करने की बात। दूसरे मिसरे में लफ्ज अच्छा न्यू तो बुरा की जिद है, लेकिन यहाँ ये लफ्ज सेहत याब होने के मानी में आया है। इस एतबार से अच्छा बुरा और हुआ ना हुआ अल्फाज एक दूसरे की जिद हैं। शेर की ये खूबी सनत तजाद कहलाती है।
1: हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस मिसरे में लफ्ज हक दो जगह आया है। इस लफ्ज के दोनों जगह अलग अलग मानी हैं। एक हक होना यानी सच और दूसरा हक अदा होना यानी फर्ज।
2: मिर्जा असादुल्ला खान गालिब, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अब सुनते हैं
3: हिंदी साहित्य के जाने पहचाने कवि रघुवीर सहाय की काव्य रचना तोड़ो पर आधारित ये कार्यक्रम।
2: श्रोताओं, इस कविता का भावार्थ ये है कि व्यक्ति को सामाजिक और व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ना चाहिए, पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए और परिवर्तन को अपनाना चाहिए।
3: ये कविता मनुष्य को अपनी रूढ़िवादी सोच और डर को त्यागने के लिए प्रेरित करती है और उसे स्वतंत्रता और विकास की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आइए सुनते हैं हमारी विशेष काव्य प्रस्तुति तोड़ो।
4: आवाजें चित्र खींचती हैं, बिंब रचती हैं। इन आवाजों को सुनकर भी आपके मन में कुछ चित्र उभरे होंगे। किसके चित्र उभरे? पत्थर तोड़ने, मिट्टी गोड़ने, खेत जोतने के? ना, बिल्कुल सही।
5: तोड़ना एक क्रिया है। तोड़ने का अर्थ नष्ट कर देने से है, मगर हर समय तोड़ना बुरे अर्थ में नहीं होता। किसी चीज को नष्ट करना नहीं होता, तोड़ने के बाद ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अक्सर हम कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया रचने के लिए कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करते हैं। किसी वस्तु को सार्थक रूप देने के लिए भी उसमें तोड़फोड़ करते हैं। जैसे पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, तब
4: फिर आपने तोड़ना शब्द का प्रयोग कई रूपों में सुना होगा। आप खुद भी तो ऐसा प्रयोग करते होंगे। परंपरा तोड़ने की बात तो अक्सर हम करते हैं। समाज के सारे बंधन तोड़ दो, रीति रिवाजों के बंधन तोड़ दो जैसे डायलॉग तो फिल्मों में खूब सुने जाते हैं। आप अपने दोस्तों से ऐसे डायलॉग नहीं बोलते क्या? फिर क्या, रघुवीर सहाय ने भी अपनी कविता में तोड़ना क्रिया का कुछ इसी रूप में प्रयोग किया है।
5: तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने
4: तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वो पोसेगी बीज को, हम इसको क्या का डालें इस अपने मन की खीज को। गोड़ो, गोड़ो, गोड़ो।

0: कितनी सुंदर कविता है। मनुष्य का स्वभाव होता है निरंतर प्रगति करने का, विकास करते रहने का। वो एक जैसी स्थिति में बहुत देर तक नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ नया करने, कुछ नया रचने की बेचैनी उसमें रहती है। इसलिए भी वो बार बार पुराने को तोड़कर नया रचने की कोशिश करता है। मगर इस कविता में नया रचने के साथ साथ थोड़ा अलग भाव है। क्या
1: ये कविता केवल किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहती, एक बात के जरिए कई बातों की तरफ इशारा करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि झूठे बंधन टूटें, धरती को हम जाने, मैदानों में ऊब, मिट्टी में रस होगा ही जैसे पद इस कविता में कई बातों की तरफ इशारा करते हैं। धरती यहां प्रतीक के रूप में भी है, केवल अन्न उगाने का माध्यम नहीं। आपने भी तो ऐसे मुहावरे अक्सर सुने होंगे, अपनी जमीन पहचानो, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, धरती पर पांव रखकर चलो। इन सब में धरती वास्तव में धरती नहीं है। यहां धरती मनुष्य की जड़ों का भी प्रतीक है, उसके मूल्यों का प्रतीक है, उसके जीवन की हकीकत का प्रतीक है। इसी तरह इस कविता में भी हम धरती को मनुष्य के मूल्यों, उसकी परंपराओं आदि के प्रतीक रूप में देख और व्याख्यायित कर सकते हैं।
0: इस कविता में एक पंक्ति आई है, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। कवि पथरीली ऊसर बंजर जमीन को खेती लायक बनाने की बात करते करते मन की खींच की बात करने लगा है। क्यों? मन के भीतर जो पत्थर हैं, जड़ता है, वो पुरानी ग्रंथियों से जकड़ा हुआ है, उसे भी तो तोड़ने की जरूरत है। इसलिए कवि ने अंत में गोड़ो गोड़ो गोड़ो का आह्वान किया है, यानी मन को भी, अपने हृदय को भी, अपनी सोच, अपने विचारों को भी गोड़कर वैसे ही उपजाऊ बनाने की जरूरत है जैसे किसान खेत को जोतकर उसे अन्न उगाने लायक बनाता है। अच्छा, अब आप ये भी तो याद करके बताइए कि ऐसी और कौन कौन सी कविताएं आपने पढ़ी हैं जिनमें तोड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी विशेष काव्य प्रस्तुति तोड़ो। जरूर बताइएगा कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। तो इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नाम तो सुना ही होगा।
4: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इससे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए क्या बात हुई सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
5: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
6: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
5: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और एडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
6: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
5: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
6: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं, वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है. वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते.
5: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है. एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
6: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके. और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है. सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था.
4: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था. सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से. इसीलिए कहूंगा कि सुरु शारदा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर. और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं. आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी. आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM.
3: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ओले ओले ओले, हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। श्रोताओ, धरती ने हमें एक मुस्कुराता खिलखिलाता जीवन दिया और इस जीवन को संजोए रखने के लिए जीने के हर साधन दिए, पर हम कब धरती के इस उपकार के बदले उसे कुछ सकारात्मक दे पाएंगे? आइए सुनते हैं जीवन के साधन।

0: मानव, ओ मानव, पानी बंद करो।
1: क्या है भैया, नहाने तो दो कम से कम। कभी तो कहते हो कि ढंग से नहाया कर और कभी।
0: मानव, मैंने नहाने के लिए कम मना किया है तुम्हें, पर तुम नहाते कम और पानी ज्यादा बहाते रहते हो।
1: लो, आप खुश हो? और वैसे भी ना, मेरे पानी बहाने से ये तो आकार पड़ जाएगा ना।
0: मानव,
2: अरे आप बस भी करो, तुम लोग क्या करते हो? क्या विवेक, तुम भी ना सुबह सुबह उसको लेक्चर देना शुरू कर देते।
3: मम्मी, अरे भाई, विवेक तो बड़े भाई का फर्ज पूरा कर रहा है। अरे उसी से तो सीखेगा मानव अच्छी आदतें, है ना?
2: अभी सीख लेगा सब कुछ। अब नाश्ता तैयार है, आओ मानव, तुम सृष्टि को बुला लो।
1: ठीक है। सृष्टि दीदी, नाश्ता तैयार है।
4: अच्छा अच्छा, आती हूँ।
0: चलो चलो चलो, आज क्या बना है?
1: अरे वाह, पकोड़े, और वो भी हरी चटनी के साथ। मजा आ गया आज तो।
0: मम्मी, तुम्हारे हाथ के पकोड़ों का कोई जवाब ही नहीं है।
1: अरे वो तो ठीक है, पर चटनी में बहुत मिर्च है। मम्मी जरा प्लीज पानी देना प्लीज।
2: अच्छा अच्छा, ये लो बेटा पानी।
0: क्यों मानव, अब समझ आया ना पानी का मोल? अब बहाता रहते है ऐसे ही पानी, समझता ही नहीं है।
1: तो इसमें कौन सी खास बात है भाई? मिर्च लगने पर और प्यास लगने पर पानी ही तो पीते है ना।
3: हाँ हाँ, पर इसकी फिजूल खर्ची करोगे तो प्यास लगने पर पीने के लिए शायद पानी नहीं मिल पाएगा।
5: और पानी नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होगा, न पेड़ पौधे और न हम, कुछ भी नहीं।
3: करेक्ट, बिल्कुल सही।
1: तो इसका मतलब पृथ्वी पर सारा जीवन केवल पानी के ही कारण है।
0: हाँ मानव, हाँ, पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। इसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि पृथ्वी ही वो जगह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है, और पृथ्वी में ही जीवन को बरकरार रखने के लिए संसाधन मौजूद हैं, समझे?
5: और पानी उन संसाधनों में से एक है, केवल पृथ्वी पर ही ये तरल अवस्था में पाया जाता है।
0: बिल्कुल सही।
3: हाँ।
5: विवेक भैया, पृथ्वी के पास ऐसे और क्या संसाधन है जिससे यहाँ जीवन संभव है?
0: श्रृष्टि, काम करो, तुम ही बता लो।
1: विवेक भैया, मैं बताऊँ?
0: हाँ हाँ मानव, तुम बताओ, बड़े इंटेलिजेंट हो गए आजकल।
1: खाना।
0: मानव का जवाब तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि इसे खाने के अलावा और कुछ याद ही नहीं रहता।
5: ऑक्सीजन भी तो जीवन के लिए जरूरी है ना विवेक भैया?
0: बिल्कुल ठीक श्रृष्टि, बिल्कुल ठीक। पापा, कुछ कहेंगे आप?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में।
0: पर तुम जानती हो सृष्टि, इस ऑक्सीजन की उत्पत्ति के पीछे भी एक प्रक्रिया कार्य करती है।
3: हमारे जीने के लिए जरूरी ये सभी संसाधन सीमित हैं, इसलिए इनका उपयोग समझदारी से करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पकोड़े भी सीमित हैं, और समझदारी इसी में है कि फटाफट इनका उपयोग कर लिया जाए।
0: मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ?
1: विवेक भैया, मैं पार्क में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, आप भी चलोगे?
0: नहीं मानव, मैं नहीं यार।
1: अरे चलो ना भैया।
0: अब मैं भाई पढ़ाई करनी
1: है। चलो भैया, हम भी टहलने चलते हैं ना। मम्मी, हम तीनों पार्क जा रहे हैं।
0: चलो।
2: अच्छा बेटा, ध्यान से।
0: चलो चलो चलो, पार्क में चलते हैं, शायद आलोक वहाँ मिल जाए,
5: और शायद श्वेता दीदी भी।
1: ओए बंटी, मैं भी आ गया, मेरी भी बुकाई कर लेना।
2: पर मानव, शिवी तो आया ही नहीं है, बॉल तो उसी के पास है ना।
1: अरे यार, ये शिवी भी ना, अब क्या करे?
5: अरे मानव, जब तक तुम्हारे और दोस्त नहीं आते, तुम लोग भी हमारे साथ टहल लो, ठीक है?
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे राहुल, शिवी क्यों नहीं आया आज?
6: उसके दादाजी की तबीयत खराब है, उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है।
1: अच्छा, तुझे पता है बंटी, ऑक्सीजन जीने के लिए बहुत जरूरी है, जो सिर्फ हमारी धरती पर ही सही अनुपात में पाई जाती है।
5: शाबाश मानव। अच्छा विवेक भैया, जीवन के लिए पृथ्वी में और क्या जरूरी संसाधन है?
0: देखो सृष्टि, भोजन पैदा करने की क्षमता भी पृथ्वी में ही है, सूर्य की ऊर्जा के सहयोग से हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं।
5: ओ, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं,
0: है
5: ना?
0: बिल्कुल ठीक सृष्टि, बिल्कुल ठीक।
7: भाई क्या बात है, बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है बच्चों।
0: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते शर्मा अंकल।
7: नमस्ते भाई, किस चर्चा में लगे थे आप लोग?
0: अंकल, हम चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी के पास ऐसे क्या साधन हैं जिससे यहाँ जीवन बरकरार रहता है।
7: भाई बहुत अच्छे, वैसे अगर तुम लोग चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ बोलूं।
5: हाँ,
7: अंकल चलो भाई, विषय विशेषज्ञ की हैसियत से ही साथ रख लो।
0: चलिए अंकल, चलो चलो चलो। अंकल वैसे आपके आने से ना मेरी सारी समस्या हल हो गई। भाई अब आप हम सबको विस्तार से सब कुछ समझा सकते हैं।
7: ठीक है, तो सबसे पहले मैं भूमिका बांध देता हूँ। देखो ऐसे कई तंत्र हैं जिनके आपसी सामंजस्य से जीवन संभव है।
1: अंकल आप वैज्ञानिक होकर भी तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं?
7: अरे मानो बेटे, ये तांत्रिक वाला तंत्र नहीं
1: तो फिर
7: विज्ञान वाला तंत्र है, यानी कि सिस्टम।
1: ऐसे कौन से सिस्टम है अंकल?
7: हाँ मैं बताता हूँ, देखो चट्टान, वायुमंडल, समुद्र और जीव तंत्रों के आपसी सामंजस्य से जीवन संभव होता है।
0: और ये सभी तंत्र एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधे हुए काम कर रहे हैं। इनमें जरा सी भी छेड़छाड़ जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है।
1: भैया आप तो हमें डराने लग जाते हो।
0: अरे कहाँ मानव,
1: आपसे तो अंकल की बातें अच्छी हैं जो जल्दी से हमारी समझ में आ जाती है।
7: देखो अब मैं तुम्हें वहीं से बताता हूँ जहाँ तुम्हारी चर्चा चल रही थी।
1: ठीक है,
7: यानी प्रकाश संश्लेषण से।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
7: अच्छा ये बताओ बच्चों कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति और उसके निर्वाह के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है?
1: खाना और क्या।
5: अंकल ज्यादातर सवालों में मानव का जवाब यही होता है।
0: बिल्कुल। अंकल मुझे लगता है कि पानी बहुत जरूरी है।
7: ठीक है ठीक है, पर इससे भी पहले आती है ऊर्जा, ऊर्जा की उपलब्धता और इसका उपयोग।
1: और दूध पीने से ऊर्जा आती है, ऊर्जा यानी ताकत, ऐसा मेरे दादाजी कहते हैं।
7: दादाजी ठीक कहते हैं, पर हम पूरे जीवन मंडल की बात कर रहे हैं, इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है?
0: सूर्य से, और कहाँ से?
7: बिल्कुल सही, पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य का रेडिएशन ही है,
8: यानी विकिरण।
7: हाँ, हालांकि ये ऊर्जा पृथ्वी को बाहरी स्रोत से मिलती है, पर पृथ्वी पर इसमें नवीनीकरण होते रहते हैं।
5: हाँ, सूर्य की रोशनी में ही हरे पौधे भोजन तैयार करते हैं, है ना?
7: अच्छे, यहाँ मजे की बात ये है बच्चों कि पौधे सूर्य से प्राप्त कुल रेडिएशन का मात्र 1% भाग ही लेते हैं।
0: अच्छा?
7: और ये 1% भी काफी होता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन अंकल ये हरे पौधे भोजन तैयार कैसे करते हैं?
7: देखो बच्चों, हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक अणु पाए जाते हैं जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं।
0: और इस प्रक्रिया में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
7: बिल्कुल ठीक कहा।
1: और इसीलिए हरे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं।
7: ठीक है, पर मानव तुम्हें तो काफी कुछ पता है।
1: और अंकल मुझे ये भी पता है कि आज मम्मी ने मिठाई भी बनाई है।
0: मानव मिठाई की बात बीच में कहाँ से आ गई?
7: ठीक है मानव, ठीक है मैं समझ गया कि अब तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है।
0: अंकल अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। अब जानकारी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू अंकल।
5: बाय अंकल।
0: बाय अंकल। थैंक यू, थैंक यू अंकल। बाय।
2: बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने।
1: मम्मी वो ना शर्मा अंकल मिल गए थे और वो बता रहे थे कि सूरज की रोशनी में भोजन कैसे तैयार होता है।
2: ये शर्मा जी ने प्रोफेसरी छोड़कर खाना पकाने का काम कब से शुरू कर दिया?
5: अरे नहीं मम्मी, वो तो हमें पौधों में तैयार होने वाले भोजन की प्रक्रिया समझा रहे थे।
2: अच्छा अच्छा, वही मैं सोचू ये अच्छे भले शर्मा जी को क्या हो गया अचानक।
5: पापा शर्मा अंकल ने एक बात बढ़िया बताई। सूर्य के प्रकाश में पौधे भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया में पानी का भी प्रयोग होता है और पानी से एक ऑक्सीजन अणु वातावरण में मुक्त हो जाता है।
9: वेरी गुड।
1: और अगर ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो तो क्या होगा?
3: पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा।
0: पापा, मैंने एक जगह पढ़ा था कि पृथ्वी पर पौधों के जन्म से और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पहले यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त रूप से उपलब्ध ही नहीं थी।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही पढ़ा था।
1: पर ऑक्सीजन करती क्या है?
5: अरे बुद्धू, हम सांस के साथ ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, जो हमारे खून की लाल कणिकाओं में मौजूद हेमोग्लोबिन से जुड़कर सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है।
3: अरे गुड़ा, मैं कह सकता हूँ जैसा पिता वैसी पुत्री।
0: और एक बात और बताऊं, रासायनिक रूप से ऑक्सीजन बहुत ही क्रियाशील होती है और ये अधिकांश प्राकृतिक तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता रखती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से चयापचय की गति भी बढ़ जाती है।
3: अब तो मुझे तुम्हारे बारे में भी कहना पड़ेगा।
0: प्लीज
3: पिता वैसा पुत्र।
1: अरे पापा रहने दो बस, ये तो किताब से ना रट्टा मारा हुआ लगता है।
5: हाँ मम्मी, मैं देखती हूँ।
0: मम्मी वैसे आज शर्मा।
5: अरे श्वेता।

0: दीदी
1: नमस्ते
2: नमस्ते
1: विवेक भैया श्वेता दीदी आई है
3: सृष्टि यही बुला लो मम्मी से मिलने आई हूँ
2: हेलो विवेक
3: हेलो श्वेता
2: आज तो मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ
1: क्या बात है
2: मेरा मतलब वो नहीं था
4: अरे बेटा आपका कुछ भी मतलब हो बैठो खाना तैयार है
2: नहीं आंटी अभी तो मैं जल्दी में हूँ विवेक
3: हाँ
2: जैसा कि हमने तय किया था
1: क्या तय किया था हाँ
3: पूरी बात तो सुन लिया करो इसकी
2: वो ना कल मेरे घर पर धरती के विषय में एक नाटकीय परिचर्चा होगी और हमने डॉक्टर विश्वास को भी आमंत्रित किया है
3: डॉक्टर विश्वास को ये तो तुमने बहुत अच्छा किया श्वेता
2: तो आप सब लोग ठीक समय पर आ जाइएगा ठीक है
4: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे हम तो सब
2: आंटी आप भी जरूर आइएगा
4: हाँ बेटा और अंकल को भी बुला लो
2: अंकल आप भी जरूर आइएगा
1: थैंक यू दीदी हम जरूर आएंगे क्यों विवेक भैया
4: जरूर आएंगे ओके बाय
2: बाय
5: हेलो बेटा
2: हेलो अंकल
1: हेलो श्वेता दीदी
2: हेलो विवेक
3: हेलो
4: हेलो बेटा कैसे हो
2: हाँ जी ठीक है
4: सारी तैयारी हो गई
2: हाँ जी आइए चलिए अंदर चलिए आंटी
5: हाँ चलो चलो
4: चलो चलो
2: बैठिए तो हम शुरू करते हैं आज की नाटकीय परिचर्चा धरती मेरी धरती
5: वेरी गुड वेरी गुड
3: सब बैठ गए ना भाई
5: हाँ तैयार है भाई बिल्कुल तैयार है
4: दीदी श्वेता दीदी वो सामने कौन है
2: वो डॉक्टर विश्वास है
4: नमस्ते अंकल
3: नमस्ते
2: डॉक्टर विश्वास ये मेरे दोस्त हैं मानव सृष्टि और विवेक और ये इनके मम्मी पापा हैं
5: हेलो हेलो डॉक्टर विश्वास हाय
2: और मैं हूँ इस कार्यक्रम की सूत्रधार धरती मेरी धरती के मंच पर आपका स्वागत है आज माँ धरती खुद अपने बारे में बताएंगी और आपसे सवाल करेंगी
6: मेरे प्यारे बच्चों लाखों करोड़ों वर्षों से मैं तुम्हें पाल पोस रही हूँ मेरी सामर्थ्य तुम्ही से है मेरी शक्तियां और साधन असीमित नहीं है मेरे वही साधन बार बार चक्रित होकर जीवन को कायम रखते हैं
2: क्या और जानना चाहेंगे आप लोग धरती के पास उपलब्ध साधनों के बारे में
3: हाँ, बताओ बताओ हाँ
2: तो मैं बुला रही हूँ डॉक्टर विश्वास को जो धरती के साधनों के बारे में जानकारी देंगे
7: देखो बच्चों आज धरती पर जीवन इसलिए है कि इस जीव मंडल में आवश्यकता अनुसार पानी खनिज और गैसीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ रोजाना सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा उपलब्ध है
2: और अगर आप लोग चाहो तो डॉक्टर विश्वास से सवाल भी कर सकते हो
1: मानव तुम तो पृथ्वी के संसाधनों के बारे में जानना चाहते थे ना आज अच्छा मौका है जो पूछना है पूछ लो
3: हाँ।
4: अंकल पृथ्वी के संसाधनों के बारे में कुछ बताइए ना
7: देखो मानव पृथ्वी के संसाधनों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है
4: अच्छा
7: पहले जैविक संसाधन और दूसरे अजैविक संसाधन
1: अंकल जैविक संसाधन वही है ना जो हमें पेड़ पौधों और अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं
7: सजीवों जिनमें वनस्पतियां भी शामिल हैं उनसे मिलने वाले पदार्थ जैविक संसाधन कहलाते हैं हाँ अच्छा मानव तुम बताना चाहोगे कि जैविक संसाधन कौन कौन से हैं
4: हाँ हाँ क्यों नहीं जैविक संसाधन में सबसे प्रमुख है खाना
3: चलो इस बार तो मानव का तीर निशाने पर बैठा
4: देखा
1: असल में अंकल जब भी मानव से कोई सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले उसका उत्तर खाना ही होता है
7: अरे कुछ भी हो सृष्टि हमें उत्तर तो सही मिला
1: हाँ।
7: वैसे भी जैविक संसाधनों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन के अलावा भोजन भी मिलता है ये भोजन पेड़ पौधों या अन्य जीवों से मांस आदि के रूप में प्राप्त होता है
4: अंकल हमें जैविक संसाधनों से भोजन के अलावा और क्या क्या मिलता है
7: बच्चों जीवित संसाधनों यानी पेड़ पौधों और जीवों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: विवेक भैया दवाइयाँ और वो भी जीवों से
3: हाँ सृष्टि तुम क्या समझती हो कि दवाइयाँ केवल पेड़ पौधों से ही बनती है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में तो जीवों से कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है
4: ओ, भाई मुझे तो ना दवा के नाम सुनकर ही डर लगने लग जाता है भैया ये दवा की बात ना यही छोड़ते हैं, और अंकल ना और कुछ बता रहे हैं, उसको सुझा।
7: अरे बच्चों ये तुम लोग क्या खुशल खुशल कर रहे हो?
4: कुछ नहीं अंकल।
7: हाँ तो मैं बता रहा था कि जैविक संसाधनों से प्राप्त सामग्री का उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है।
4: अच्छा।
7: जिससे हमारे उपभोग की विभिन्न वस्तुएं हमें मिलती हैं।
1: अंकल जैविक संसाधनों का सबसे बड़ा गुण तो हमारी धरती को सुंदर बनाने का है।
7: हाँ बेटी बिल्कुल ठीक। धरती को भांति भांति के पेड़ पौधों और रंग बिरंगी तितलियों जैसे अनेक जीवों ने आकर्षक और सुंदर बनाया हुआ है।
3: अंकल बिल्कुल ठीक, जैविक संसाधनों ने धरती को सजाया और संवारा है।
7: यस।
4: अंकल लगता है कि हमारी दुनिया जैविक संसाधनों के बलबूते पर ही चल रही है।
7: तुमने बिल्कुल ठीक कहा मानव। जैविक संसाधनों से हमारी आधारभूत आवश्यकताएं तो पूरी हो ही सकती हैं। वैसे भी हमारी अन्य जरूरतों के लिए अजैविक संसाधन उपलब्ध हैं ही।
4: अंकल कौन कौन से अजैविक संसाधन महत्वपूर्ण है?
7: देखो अजैविक संसाधनों की सूची तो बहुत लंबी है, फिर भी इनमें मुख्य रूप से ऊर्जा और निर्माण संबंधी संसाधन मुख्य हैं।
1: अच्छा। ऊर्जा संसाधनों में तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन शामिल है ना?
0: वेरी गुड वेरी गुड।
7: तुमने ठीक कहा सृष्टि। जीवाश्म ईंधनों के अलावा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा भी धरती के अजैविक संसाधन हैं। हाँ, इन ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त बिजली के बिना उद्योगों और आधुनिक जीवन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।
3: हाँ अंकल, सीमेंट, लोहा, स्टील, मिट्टी जैसे अजैविक संसाधनों के बिना तो बड़ी बड़ी इमारतों और सड़कों को बनाना संभव ही नहीं होगा।
4: तब तो अजैविक संसाधन भी बड़े काम के हैं।
7: अजैविक संसाधन काम के ही नहीं मानव, बल्कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं।
4: वो कैसे अंकल?
7: देखो हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व भी तो अजैविक संसाधनों का ही हिस्सा है बच्चों।
3: अच्छा।
7: हाँ, जो हमें धरती से प्राप्त होते हैं।
1: हाँ अंकल, बिना खनिज तत्वों के हमारा शरीर या तो कमजोर हो जाएगा या फिर निर्जीव।
7: तुमने बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। धरती के खनिज तत्वों से ही विभिन्न धातुओं को बनाया जाता है जो कि निर्माण संबंधी कार्यों में प्रयोग की जाती हैं। अच्छा तुम्हें कुछ धातुओं के नाम पता है?
1: हाँ हाँ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा जैसी धातुएं हमें धरती से ही प्राप्त होने वाली धातुएं हैं।
4: अरे हमें तो आज ही पता चला कि धरती हमें इतना सब कुछ देती है।
3: हाँ मानव, हाँ धरती ने हमें पानी, हवा, खनिज जैसी अनेक बहुमूल्य चीजें दी हैं, जिनके बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
7: अच्छा बच्चों कुछ और जानना है तुम लोगों को धरती के संसाधनों के बारे में?
3: हाँ अंकल, पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक संसाधनों के बारे में भी तो बताएं जिन पर जीवन निर्भर करता है।
7: अरे वाह विवेक बेटा, बड़ा अच्छा सवाल किया है तुमने।
3: पापा पापा भी यही कहते हैं अंकल।
7: अच्छा ये बताओ कि पृथ्वी पर जीवन के प्रकार क्या हो सकते हैं?
1: जंतु और वनस्पति।
7: बिल्कुल ठीक सृष्टि। जंतु और वनस्पति दोनों ही अनेक रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये रासायनिक तत्व जीवित और निर्जीव दोनों ही प्रकार के पदार्थों में पाए जाते हैं।
2: इसीलिए जीवितों को निर्जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है।
7: भाई पूरी फैमिली इंटेलिजेंट है।
3: थैंक यू। लाइक सन लाइक फैमिली।
7: अच्छा बेटा, सभी जैविक वस्तुओं में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
2: और जो तत्व जीव द्रव्य निर्माण में काम आते हैं उन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। वो सभी हमें धरती से ही प्राप्त होते हैं।
7: लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स चट्टानों, वातावरण, जीवित संरचनाओं और पानी से होकर चक्रित होकर हम तक और फिर वापस धरती में पहुंचते हैं। पर धरती माँ को यहाँ भी दुख है बच्चों।
6: हाँ मैं दुखी हूँ क्योंकि इन चक्रों के बीच में मानव, खरपतवार नाशी, पेस्टिसाइड और प्लास्टिक जैसे कचरे आदि के रूप में नए रसायनों को जोड़ देता है जिससे जीव मंडल में जीवन को चलाने वाले चक्र बुरी तरह प्रभावित होते हैं।
2: तो दोस्तों अपने और अपनों के जीवन के लिए प्रकृति से सामंजस्य बनाकर चलो।
3: अंकल एक सवाल आ रहा है दिमाग में।
7: हाँ हाँ पूछो विवेक।
3: आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जिनके पुनः चक्रण या रीसाइकिल की प्रक्रिया चलती रहती है, पर ये पुनःचक्रण होता कैसे है?
7: देखो वे एक ऐसा है, सभी खनिज तत्व प्रकृति में विभिन्न संचरण तंत्रों में शामिल रहते हैं।
3: अच्छा,
1: पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तो रिसाइकल नहीं होती ना अंकल?
7: नहीं सृष्टि, ऐसा नहीं है। ऊर्जा ना पैदा होती है ना मरती है, वो तो अपना रूप बदलती रहती है।
1: अच्छा।
7: लगभग सभी खनिज तत्व चट्टानों, वायुमंडल, जीवों और पानी से होकर चक्रित होते रहते हैं, और सौर ऊर्जा को उपयोग लायक बनाने का काम पौधों द्वारा किया जाता है।
3: और बारिश के साथ कई खनिज वापस धरती में भी पहुंच सकते हैं।
7: हाँ
3: ना अंकल?
7: बिल्कुल विवेक, बाद में जीवन के नष्ट होने पर ये खनिज वापस धरती में समा जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है।
4: तब तो जब तक ये चक्र चलता रहेगा हमें खाना मिलता रहेगा और जीवन चलता रहेगा।
1: तुझे फिर भूख लगाई ना?
7: देखो बच्चों, मानव की बात तो सही है, जिस दिन ये चक्र रुक जाएंगे पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन भी समाप्त हो जाएगा।
1: तो हमें अपनी सभी क्रियाकलापों पर ध्यान देना चाहिए कि जीवन के लिए आवश्यक पृथ्वी पर उपलब्ध सभी संसाधनों का पुनः चक्रण ना रुके।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए हमें क्या करना होगा अंकल?
7: विवेक, इसके लिए मानव को पृथ्वी के सभी संसाधनों का उपयोग विवेक पूर्वक करना होगा।
4: तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव को विवेक भैया की तरह सोचना और चलना होगा।
7: अरे ऐसा ही समझो, वरना पृथ्वी पर विभिन्न चक्रों का आपसी तालमेल गड़बड़ा जाएगा,
1: तब परिणाम भयंकर होंगे।
2: और कुछ परिणाम तो हमारे सामने आने भी लगे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्माती धरती।
4: बस बस दीदी, अब मैं समझ गया। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे पृथ्वी का कोई चक्र बाधित हो।
7: शाबाश, लगता है मानव समझदार हो गया है।
4: पर एक संसाधन जो श्वेता दीदी की मम्मी ने तैयार करके रखा है, भाई मैं उसके उपयोग में और देरी नहीं करना चाहता हूँ।
8: मानव तू नहीं सुधरेगा,
1: तुझे फिर खाने की याद आ गई है ना?
3: खाता ही रहे।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सुनो शारदा।
2: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
3: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
4: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
3: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी, जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
2: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: तो इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान। कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे

की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। नमस्कार साथियों, आप

भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में माँ बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
1: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
0: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
2: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
3: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
2: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
3: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
4: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: यहाँ 45 मिनट योग करने से बीमारियाँ दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।